0: महला पहला जे मुहाका कर मोहे पितरी दे अगे वस संजाणिए पितरी चोर करे बढ़िया है हाथ दलाल के मुस्पिए करे नानक अगे सो मिले जे खटे काले दे महला पहला
1: जो जोरु सरनावड़ी आवे बारो बार जूठे जूठा मुख वसे नितन तो होए खुआ सुचे ए ना आखिए वेंजे पिंडा धोई सुचे सही नानका जिन मन वसया सोई पौड़ी
2: हारिया घरे आई जोगन हारिया।

पापी सो तन कड्या थुका पियां तित जित मुख नाम ना उचरे बिन नाम रस खाए नानके।

0: एक नहीं आस की दूजे लगे जाए नानक आसक कांडिया साधी रह समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आस के होना के जले कै वरते सोए महला दूजा
1: सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुत्था जाए नानक दोवे कूड़िया थाए न काई पाई पौड़ी जित से पाई है।

0: गल्ला करे कनेरिया कसम ना पाए सार आप गवाए आप गवाए सेवा करे ताकिश पाए मान नानक जिसनों लगा तिस मिले लगा सो प्रमाण भला दूजा
1: जो जी हो सो गए मुह का कया वाओ बीजे बेख मंगे अमृत बेख हुए न्याओ महला दूजा हरियाणे दोषती कदे ना वे रास जे हा जाने ते होवरते बेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस समावे दूजी हो वे पास साहिब सेती हुक्म ना चल।

0: आपे पूरन देखनी दुध समय एक चुले रहन चढ़े एक निहाली पै सवन एक उपर रन खड़े तिना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा
1: आपे साजे करे आप जाई पे रखे आप तिस विजंति उपाय के देखे था पियू था किसनो।

0: आगे बिनवता तेरा जी तेरा नाम सत है श्री वाहे गुरु
1: पार तेरा मर्तबा रंग परांगणी कण जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किस जान ला सब किस तेरे बस तेरा कर पला
0: तेरे कर आनंद बधाई तुद कर मान महता तेज अपना आप जाए सर्व कला भरपूर दी सजत कता नानक दास दास तुद आगे बिनवता श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दोयदाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म दू करमी आपो अपनी के नेड़े के दू जिनी नाम ते आए आ गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आए आ गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
2: बोल जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती जी के पातशाह दसवें प्रथम भगौती सिमरका गुरु नानक ले ते आए फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जन हर गोविंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जैस डठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निद आवे ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुकतियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छगिया देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगड़ियां ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चार खड़ियां ते चढ़े आ रिया नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचे आरियात देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ के जेता श्री साहिब जी सहाय खालस जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाहा दान परोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इसनान चौंकियां झंडे बोंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखा दा मन नीमा मत उच्चे मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जियो श्री ननकाना साहेब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्ना तो पंथ नू विसोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बख्शो हे नमानिया दे मान नतानिया दे तान नियोटियां दी ओटा तान तान श्री गुरु रामदास साहेब जीओ आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर सबद चौंके आसा दीवार दे भोग जी की अरदास भुल चुक मुआफ करने सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद हो बना नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी के फतेह।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद चक चिहन यर बरन जात यर पात नहन जेह रूप रंग यर रेख पेख को कह न सकत केह अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहि जय कोट इंद्र इंद्राण साहि सहन गणिजय त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत तय सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम भरनत सुमत काल समुद्र भय रूप प्रगट हर नाम उदाहरण बस है संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जाने भय ओतहि समसर सोई तरन गगन नवखंड मह ज्योत स्वरूपी रहे ओ पार पन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जुन परतख हर मेल लहो दयाल टह पय द्वारिया रख ले बहु दीन दयाल प्रमत बहु हारिया भगत वशल तेरा बिरद हर पतत उधारिया तुझ बिन नाही कोए बिनो मोहे सारिया कर गहले हो दयाल सागर संसारिया लिख कत है ना छूटी खिन खिन भूलन हार बखसनहार बखसले नानक पार उतार सुकह टल गुर सेविया एहनिस सहज सुभाए दर्शन परस आए गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसमदी नूर अर सहों कुरसों चटियै तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटियै सज्जन सच्चा पातशाह हो सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह सर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी
सोरठ महला पंजवा ताप गवाया गोरपुर वाज अनहद तूर सर्व कल्याण प्रभ कीने कर कृपा आप दीने। ताप गवाया गोरपुर वाज अनहद तूर सर्व कल्याण प्रभ कीने कर कृपा आप दीने। वेदन सतगुर आप गवाई सिख संत सब स्रस

अरहं जो मंगह सो लेवहे प्रभ अपनिया संतां देवहे हर गोविंद प्रभ राखिया जन नानक सच सो पखिया जो मंगह सो लेवहे प्रभ अपनिया संतां देवहे हर गोविंद प्रभ राखिया जन नानक सच सो पखिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सोरठ महला पंजवा ताप गवाया गुरपुरे वाजे अनहद तूरे सर्व कल्याण प्रभ कीने कर कृपा आप दीने।

तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिरसा पातशाहों ने चल चौर छत पौड़ी बड़ी वड्डा।

पौड़ी बड़ी बड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग नेक ना जापन करतबा जी अंदर जियो सब की जान ला सब कुछ तेरा बस तेरा कर पला तेरा कर नंद बधाई तुद कर मान मता तेजे अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कता नानक दासन दास तुदे आगे बिनवता।

रब सस जोत अदोत लंग परम जोत परमेश्वर प्यारा जगमग जोत नरंतरी जग जीवन जग जय जयकारा नमस्कार संसार विच आद

कीर्तन हर हर गाए समथा का पाए विश्रामा मिट गई सगली ताई अब मोय जीवन पदवी पाई चीत आयो मन पुरख विधाता संतन की शरणाए काम क्रोध लोभ मोह निवारे निवरे सगल बराई सद हजूर हाजर है नाजर कते न पयो दोराई सुख शीतल सिरदा सरदा सब पूरी होए संत सहाई पावन पतत किए खन पीतर महिमा कथन न जाई निरपव पै सगल पै खोए गोविंद चरण उठाई नानक जस गावे ठाकुर का रैन दिनस।

दुष्ट अरिष्ट टरय तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुमै संभारा, काल फास ते ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दार

सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जाने ओ। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तो हे बखाने ओ। दोहरा

0: फतेह।
1: बोलो जी वाहे गुरु, एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास। राम दासै हुई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरे है घर नौ निधे आवै ताय। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री

दान बाबेक दान विसाहु दान प्रूसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगे अटल

चरण रेन बांछे नित नानक, पुनः पुनः बलहारिया, औखद मंत्र मूल मन एकै, माने विश्वास।

संगी साथे सगल तराय, गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले।

हम आव गुण परे एक गुण नाही, अमृत षाड बिख बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एके उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलांत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। सो कहो टल गुर सेविए, एहन ससहज सुभाय। दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटी। तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी। सज्जन

सुख मांगे मोक कर संतन की तूर अंतर जामी पुरख बेदाते शरदा मन की पूर नानक दास यह सुख मांगे मोक कर।

0: नानक सतसंगा सतसंगा।
1: श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद पे विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंग फिर जंग विस्माद।

0: जावे पूर सगल्या पो लिख्या सिरलेख नानक निरपो निरंकार सच एक महला पहला।
1: नानक निरपो निरंकार हुर केते राम रवाल केतिया कन कहानियां केते वेद विचार केते नचे मंगते गुड़मुड़ पूरे ताल। बाजारी बाजार में आए कड़े बाजार गावे राजे राणिया बोला यार पताल। लख टकियां के मुंदड़े लख टकियां के हार जितन पाई है नानका सेतन हुवै शार। ज्ञान ना गली ढूंढी है कथना करड़ा सार कर्म मिले तो पाई है होर एक मत हुक्म खुवार पौड़ी न दरक।

मुसलमाना सिफत शरीयत पढ़ पढ़ करे विचार, बंदे से जे पढ़ विच बंदी वेखण को दीदार। हिंदू साला ही साला हन दर्शन रूप अपार, तीर्थ नाव हर चा पूजा अगर वास बहका।

दीपालवा मंडला खंडावर पंडा अंडा जेरज उत्पूजा खानी सेत जा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कै संभाले सबना जिन कर तय करना किया चिंता पे करनीता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जहारी स्वस्थ ते

0: जिनकी लेखे पत पवै चंगे से के पौड़ी।
1: तुर करम जिना को दुध पाया ता तिनी खतम ते आया इना जनता कहवत किस न तुर वेकी जग तु पाया इक ना नो तु मेर लायक आपो तु दिखवाया गुर कृपा ते जाने जिथे सुदा बुझाया सहजे ही सच समाया सहजे ही सच समाया।
2: जो

सच्चा साहिब सिफत सवाले हो जिन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किस करना सो कर रहा महला दूजा।

0: अर्जुन देव गुरु फिर संकट जो न गर्भ न आयो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जो न गर्भ न आयो।
1: जग और न जाहे महात्म में अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो। ए पद्धत ते मत चुके रे मन भेद विभेद न जान बियो पर हृदय गुर अर्जन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो पर हृदय गुर अर्जन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो।
2: अजय गंग जल टल सिख संगत समावे नित प्राण बचे वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जुन सिर छतर आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पै गयो हरि वंश जगत जस संचरियो सो कवन कहे सिर गुर मोयो हरि वंश जगत जस संचरियो सो कवन कहे सिर गुर मोयो।
3: आवत कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग दामन बंध्यो ना जात विदे मन दर्श मग पावक जर्यो ना जात रहो जन तूरे लग नीर ना साक्ष बोर चले हर पंथ पग नानक रोग दोख अग मोह सिदे हर नाम खग।
4: पै निरपो मान्यो राख में रख रखायो अगम गोचर गत गंभीर सत

साध संग जन्म मरण निवारी अमृत कथा सुन करन अधारी काम क्रोध लोभ मोह तजारी

विवेक दान विसह दान परोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अका

हर नाम पदार्थ नानक मंगे। तत विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो।